बनू कुरैज़ा में पढ़ी और कज़ा पढ़ी है, क्योंकि देर देर से पहुंचे वहां पे, इख्तिलाफ हुआ कि ना हुआ? इख्तिलाफ हुआ। क्यों हुआ इख्तिलाफ? असल मुराद क्या है? अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से आप सल्लम क्या चाहते हैं कि असर की नमाज जो है बनू कुरैज़ा में ही लाजमी पढ़नी है, या मुराद है कि तेजी से जल्दी घर से निकलना, तेजी से पहुंचे बनू कुरैज़ा? एहतमाल दोनों के हैं कि नहीं? एहतमाल दोनों के हैं ना, एहतमाल वारिद है। इसलिए जब अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मामला देखा तो किसी पर नकीर नहीं की, क्योंकि इस नस में एहतमाल दोनों मौजूद हैं। लेकिन इख्तिलाफ क्यों हुआ? क्योंकि जो सही मुराद है उस तक ना पहुंच सके बाद सहाबा जो है। पांचवा सबब शेख साहब फरमाते हैं, शेख मोहम्मद बिन उसैन रहमतुल्लाह, कि हदीस तो पहुंची है और सारे मामले ठीक हैं, वो मुराद भी सही है, समझ लिया है, फिर भी मुखालफत हुई है। मुमकिन है, मुमकिन है कि यह इल्म नहीं था कि हुक्म मंसूख हो चुका है। दलील सही मौजूद है, हदीस सही मौजूद है, सारे मामले पहले जो चार मरले थे सब तय हैं, यानी हदीस पहुंची भी है, जिसे नकल किया उस पर भरोसा भी है, भूले भी नहीं है, मुराद भी सही पहुंची है, सही मुराद समझी है, तब भी मुखालफत हुई है। क्यों? क्योंकि पता नहीं था कि यह हुक्म मंसूख हो चुका है। इसकी जो मिसाल है सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, यानी बाज़ लोग इस पर एतराज़ करते हैं और कई बदज़ुबान बदकलामी कर बैठते सहाबा के खिलाफ नऊज़ु बिल्लाह। सैयद अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु जो है, जब नमाज पढ़ते रुकू में जाते तो अपने हाथ घुटने में ना रखते, बल्कि दोनों घुटनों के बीच में रख लेते जब रुकू करते। पहले हुक्म यही था इब्तिदा में कि हाथ घुटनों पर नहीं रखने, यहाँ पर रखने हैं। बाद में हुक्म मंसूख हो गया और फिर घुटनों का हुक्म आ गया है घुटनों में हाथ रखने से। सरदार मसूद उसकी खबर नहीं थी कि हुक्म मंसूख हो गया है, और इस तरीके से उनका अमल जारी रहा, क्योंकि यह उनको इल्म नहीं था कि ये हुक्म जो है मंसूख हो चुका है। छठा सबब शबह रहमान फरमाते हैं, अब इस पांचों चीज़ें सारी के सारी ठीक हैं, छठा मसला फिर भी मुखालफत हुई है। छठा मसला क्या है कि दूसरा नस मौजूद है या इजमा मौजूद है जो इस नस से ज़्यादा कवी है, इसलिए उसको ले लिया है, उसको छोड़ दिया है, इसलिए इख्तिलाफ हुआ है। इसकी मिसाल मैं आपसे सवाल करता हूँ, देखें सूद कितनी किस्में हैं? सूद की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं, रिबा अन्नसीया और रिबा अल्फ़ल। रिबा अन्नसीया से मुराद जो जहलियत के ज़माने में सूद था, क्या था कि किसी को उधार दे देता मुतय्यन मुद्दत तक, महदूद मुद्दत तक, अगर उस मुद्दत तक वो उधार ना चुका सका तो उस पर वो उधार जो है जो रकम है वो बढ़ती जाती, ठीक है। ये रिबा क्या है? नसीया है। रिबा फ़ज़ल क्या है? कि जो सूदी माल है, सूदी माल छः हैं, क्या है? सोना, चांदी, जौ हो गया, खजूर, नमक और नमक हो गया ना, मिल्ह नमक नहीं है तो क्या है, ठीक है ना, गंदम। ये कितनी हो गई? छः हो गए, ये छः हैं। इनमें क्या शर्त है लेन देन में? यद बेद मिसल भी मिसल, एक हाथ से दो एक हाथ से लो और बराबर मकदार होनी चाहिए। इसमें अगर दोनों शर्त में किसी में फ़र्क पड़ गया तो सूद है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के नज़दीक सूद सिर्फ एक किस्म की था, सिर्फ रिबा नसीया, रिबा फ़ज़ल उनके नज़दीक कोई मसला नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं जो है सोना चांदी या खजूर जो है थोड़ा ज़्यादा मकदार में, तो उनके नज़दीक कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि सूद सिर्फ उनके नज़दीक क्या था? अन्नसीआ। इसकी वजह क्या है? उनके पास जो दलील थी, अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन रिबा फिन नसीआ, कि सूद सिर्फ और सिर्फ नसीआ में है। इनमा किस लिए होता है? हसर के लिए होता है। इसके बाद यानी कोई सूद की और कोई सूरत नहीं है। क्या इससे मुराद यही है? अगर दूसरी हदीस भी रख लें
کہ ذہب بالذہب فضل بالفضل الى آخره، یدن بمثل بمثل، جیسے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے.